किस इन्हें कमानो जब तब कछु न सादा दह दिस ले एहो मन दौरायो कवन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हौ इसका एहो मेरा परम मोह कछूजत नाही ए तैखर पे पैरा तब एहो कहां कमावन परया जब एहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन

हर दिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संजम मह रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया। तीरथ नाए अर करनी प्रमता आगे ठौर न पावे उहां कामना आवे एह बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाये बूझे नाही एक सुदाखर ओ सजली चाक चखाइए। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ। क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा

एहो जियो बताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो कोठी पंडित वेद खोजंता जियो।

गौरी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पैचरण आरे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरे।

जियो दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो एहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो सदा तेरी शरण आई जियो जिस मिले मन जीवे पाई जियो गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो प्रभ को सद बल जाई जियो एहो निधान जपै वट पागी जियो नाम निरंजन एक निवलागी जियो गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो आठ पैर गुण गाया जियो रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो हर तन रात सच

कहाओ जित कटवस्ते पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाया नखे सोग संताप सत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पई है पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

फिर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एहो खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना, गौड़ी महला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

राम शरणाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग, देखता उठतावे, पुगत मुकत का

जन नानक हर पय दयाला तो सब विद बन आए गौड़ी महला नावा। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर शरण ताए तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुकत पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नामा। को माई पूलियो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावे। माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों निहो न लावे। नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण विश्रामा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ बिकियन की सेवा। हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस्तत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा। मन रे कहा पयो तै बौरा एनक औद कटे नहीं जाने। पयो लोग संघौरा रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो। अर सुंदर गृह नारी इनमें कटते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारो गोविंद दत्त नहीं जानी। निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे। और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा। नर अचेत पाप से डर रे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम सुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उल्ट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पट के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म।

पाए, भगत करी राचो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म त्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। न पंडित न चतर सियाना, न फूलो न परम फुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत है समाना। गौड़ी ग्वारे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ने चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए। रहाओ कर में अमृत तस कर ले, नन्ना कार ना कोई करे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इक थाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहत गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूगर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने कीने कौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई।

दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुछ तेज कराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लीलाए, निज कर वासे साज समाए, जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर कुछ देखिया ना ही दर होर, दुख सुख पाने तिसे रजाए, नानक नीच कह लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार विनाश।

तरण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मो को एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पचाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त फेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच उधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुखाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथ नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एक हो जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आप निराशा, काम क्रोध बिख भूख पे आता, नानक बिरले मिले उदासा, गौरी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रस सारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलक अपेवा, जय जय देखो तैसे साचा, दिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पैर बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानया, वेद की विपत पड़ी पछतानया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार अपारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरनाथ दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाकसले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा,
जरा संद काल जमुन संगारे रतत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरुमुख साच पगत निसारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इक तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीरज हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहर हटावो बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोर सिगार करे अति प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दर कर महला सेज खाली एन फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लक्कर नेब खवासी पाजे बिन जगदीश चूठे दिवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो ताज कुल है सिर खतर बनावो बिन जगदीश कहाँ सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हो मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जानिया हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे पर पंच ब्याज त्यागे कवरे पाय मिले सच साचे सचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाय मिले मल तोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे सो उभरे गुर शब्द विचार है प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना मृग मरे सह अपना कीना कृष्णा राज तत नहीं दीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध विनाश है सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूटस हर गुण गाए जो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पर वस्ते बिन फिर त्रिपत ना कभू होई पर पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन साटा बिन रस राते मन बौ नाटा ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माहे उलासा नानक हर रस की तृप्तासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना देखे पावे वेद करे बहु पसंद लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम विसारे सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तख सलाम अद की तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावे नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे काटे काट सिस को वाहो वाहो जे वाट दिखावे सिस को वाहो वाहो जे शब्द सुनावे किसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे वाहो वाहो किसको जिसका इहो जियो गुर सब्जी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद पाने दियो नाम बिना क्यों जीवा माए
अनदिन जपत रहूं तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हों मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हों करत नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हों मैं कर राजे बहुत आवे, हों मैं खपे जन्म मर आवे। हों मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपौ के कर तारी लावे। हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। होमे बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेचल कोय न दिसे संसार है, अप्रयो काल कूड़ सिर मार है। नेचल एक सच्चा सत सोई, जिन कर साजी तिने सब गोई। ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा। वडे कहावे हों मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी। बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए। काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई। रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी। गत मित्र पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार। परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एक अंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुर चरणी। मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। बौड़ी महला पहला राम नाम चितरा पै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्प परश सुख होई। सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए, हों मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्ध की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए,
प्रभ होए दयाल नानक जन करिए हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ होए दयाल नानक जन करिए सोलह अष्टपदिया।

सेवा करें ठाकुर नहीं दिसे, पोखर नीर विरोली है माखन नहीं दिसे। इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ। गुरमुख विच्चों हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए हो मैं मैला यो संसारा नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा बिन गुर पेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हो मैं मारे गुर के शब्द पंच संगारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोह नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते पेख करे पेख तारी अंतर तिसना फिरे अंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत परम पुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला तत नाचीने बन्ने पंड पराला मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिखिया राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरुमुख जमकाल नेड़।

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वर्ताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साच रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

सबद मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, बुर मिलिए हमको शरीर सुध भई, हौ मैं तृष्णा सब अगन बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पै पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हों मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुरु पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुरु चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारिया राजम काल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लगड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी

जब हो मन में करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना, सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किसको एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बैराए, जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा, जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया, जब एहो तावे

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

आस जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत ए हो मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द निरिद अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जा

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौना है जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगे सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो नहीं चलतनी जो इस मारे सो वड पागा जो इस मारे सो अंधिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जोला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने मैं फिर फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस पागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हरकाया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत कराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा, तिस गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर।

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्योहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध्य जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ, बिन सतनाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नगर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण त्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रखवाला।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी ना है हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन।

बिन हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्स हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहार।

सिगार मिठरस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सासन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सो जानिया। नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा। गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया। निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती। मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती। रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोय न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, तिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम ले वो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है, जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है, हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए, तन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए, सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विचों आप गवाए, विचों आप गवाए हर गुण गाए।

अंधिन लागा पाओ, सुन सखी सहेली जी की मेली, गुर के शब्द समाओ। हर गुण सारी ताकंत प्यारी, नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी, राम नाम गलहारो। तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे, बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाए, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमति चित लाइए, सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये, गुर शब्द मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर वर

गुर शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक कामने।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे दिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो हर कै सह सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमति रंग लाए एहो शरीर पूर कुसत परिया गल काई पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे।

अंदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कहेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंदिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यों मरिए, किन में दाम नाम किल विख काटे, पै पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पै मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, होमे ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाने, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहारी।

प्रसाद गवाए। सदा हर रस पाए जहाँ हर पाए रसना सब सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रहे लीलाए। नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेस सिधाए। दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही छिनछि दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए। मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुरचरणी चित लाए। जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

तो क्यों देखा प्रवदाते मेरे मीत सखा हर जियो गुरु पुरख विदाते पुरखो विदाता एक शीतर क्यों मिले तुझे उदीनिया कर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रवदाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो

है। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज।

पैन दाना जमपाल तिन को लगे नाही जो एक मन प्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंथ बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया पदक वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नान

प्राण मन तन जीव दाता बेअंत अगमा पारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक।

हर संते मान त्याग कर भगत थगौरी मोहे साधु मनते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई तेरी रीत पली भगवंत नानक जरा।

गोविंद गाय कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस्तु।

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण विस्तार सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास पवड़ी।

सत सत सौ सत पुरख ते पिन न को सौ शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा श्लोक तन तन कहा पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी।

गीत साध रज राचे तंदे कहां ब्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कहि है दियो प्रभु नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पेख अर ज्ञान ध्यान मन हथ मिलियो न कोए कहो नानक।

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विथम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

पौड़ी। रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूती है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर सम

ते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लावो।

एक आप अवर नहीं हो, हो अनहार होत सज आया, हो आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस

को गमिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल ना में राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो

एक नाम ले मने परो। यैया जन्म नहारिये गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको मार

आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार। पौड़ी।

खर्च खजाना नाम टंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दान ते।

तीनों लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का विलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी।

ओ मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार दिन से सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

विनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञा कै हा

नानक मनो न बिसरे गुण निद गोविंद राय। पौड़ी टहल करूं तो एक की जाते बिरथा न कोए।

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जमर गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रह हों आवे जाए। तहत तहत अब

सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक ब्रह्म को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता तास्यों प्रीत कर गुण निद गोविंद राए, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। थाके बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनेक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार, मन के कामना आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो।

जाके मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छत

फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ देह कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा, फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु कर।

आवै बांध्यो आपन हों हों बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियानप जिसे जनाबो सो जाने नानक श्लोक पै पंजन अग

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, पेटत साध संग पतिलाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे

पावे खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राए उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानक छाड़ एयाना हिकमत हुकम ना प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक ना जाई। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना व्यापे। श्लोक हर हर मुख ते बोलना मन उठे सुख होए नानक सब में रब रहा थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कट कट सगल के पूर रहे भगवान होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुटके होए आनंद ते हौ नाही ते आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला पूरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभु।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैव स्टूडन जाए, देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हों संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे।

अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच कर्मा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख।

हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख गावो पल पले स्तन माय मिटाओ सिमरो जास दिसंबर एक है नाम जप अगन अनेक है वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम इकाखर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी नावे ताकि एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोय उदारो।

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्त तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल हिरिया।

बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। जीने हक पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, दर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छपिस नाहीं कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक के जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो ओर निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाय सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। देर कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस्त किस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।

करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटम्बर

मतलब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साफ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

होत साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माय समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है,

सो तन पावे है जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध

साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु के संग कट कट बीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे।

समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म

सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उदारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अरे अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर वृक्ष मिट जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र,

हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मान गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिजसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरण आवे, कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, किसके हाथ होए ता सब किसले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे, परने पूला दे जिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जो जल में जल आए

अष्टपदी जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सो जन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करे हों तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे,

जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लखो सावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे, न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे।

चार अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सरक जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खेंटे करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग।

संत का दोखी सदा अपवित्त, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है।

अरविंद कह हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़पागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय तिसकी जानू तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत हम दिन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़पा गए नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबाए होवे सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सना हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ जा फट किस किसका दिया दरबै आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस देन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों वा पार विरला वा पार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तो तोय पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वट पागी पाइए साध संहर कीर्तन गाइए अनेक विघन पे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालनहार पूखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किसका ओ करने जोग किस दिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जा के मन गुर की प्रतीत किस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तेलोए जा के हृदय को होए।

अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्राक्ष है ताकि गतमित को न लाख है, प्रभ के सेवक को ना पहुँचे, प्रभ के सेवक पूछते ऊँचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया, नीकी कीरी महफल राख है पसंद करे लश्कर कोट लाख है, जिसका साफ ना काटत आप ताको राष्ट्र दे कर हाथ, मानस जतन करत बो पाक किसके कर्तव्य से जात, मारे न राखे और न कोए सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत हो मन तंत्र पी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किस अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र ताने मंथन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सब काम, बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात, करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रहे समाये, जो हुआ हो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर से आनक सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग, आमन जान न होवी तेरा नानक किस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण गवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन दो खातम कपियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूरन विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख ना ठे भाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ हो बसे सगल व्याध मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दश्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल उदमे उधार करण कारण सो प्रभ संगरत दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र गो दो हर कह नाए दैव स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा के हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चोकाचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सात वेद विचारे। हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कौन सना था। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कौन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी। जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम दिसा नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतर स्मैल बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल सास ग्रास सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगें जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कै मस्तक लेख। एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह। एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा तूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्याव। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गाओ सम दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रति सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुरे तब यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तर यह संसार बिन भक्ति तन हो सी छार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दी जय कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण निर्गुण।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार एवं कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता। जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात। जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्षे व्यापत। जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत सब केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरु को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान।

कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहा किसे व्यापक माया हाथ उसको आपे आदेश।

बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते तो ऊंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जिंजाल होमे मोह परम तय पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जा तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए कुमते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तत्का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचियो सोत सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए पगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोड़ पाए निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उद्धार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए तिसते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए निरपौ जपै सकल पौ मिटे प्रभु कृपा से प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुँच हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन देखत कुदरत श्रिष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अपदी संत संग अंतर प्रगटीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है
नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। करण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल। बंसिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सर सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए। कौन निकट कौन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जी।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार।

प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सबते ऊंच पाए अस्थान, बहु न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

व्यास सुंदर चतुर तत्व का बेता संदर्शी एक दृष्टेता ए फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रग पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के करम सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी।

रह हर दर गए पतवंत राम नाम तन संच वह साच सा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभ राख।

पाव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप करिए नानक नाम हर रंग।

हर नाम न जपै करत विपरीत, पर त्रै रमै बकै साध निंद, करन न सुनही हर जस बिंद। हिरे पर दर्ब उदर कहताई, अगर न निवरै तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो, जत देखो तत सोए, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने, मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी क्रोध सी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुर

संत प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब हुन डोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत न काट। पौड़ी पूर्णमा पूरन प्रभ एक करण कारण समरा

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौं मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हौं मैं मैल बिख उतरे, हर अमृत हर उरधार, सब कार्य तिनके सिद्ध हैं, जिन गुरमुख कृपा तार, नानक जो तुर

आई खुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिन की ती तिस पार लगाई गुरमुखानो।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसावास पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

ज्यों बोलन तिवै सुहन, नानक हर आपे जानदा, जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी। तू करता

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

ना कोई सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी। जिस साहिब पावे तिस बख्श ले सो साहिब मन पानी। जे को उस दी रीस करे सो मूर अजानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख वखानी। नानक सच्चा सच है बुझ सच समानी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है निरपौ निर्वैर निरंकार। जिन जपिया इक मन इक चित तिन लत्ता हो मैं पार। जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश। विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुण तास। जन नानक नाम से आए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे। जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे। कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जहां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए। ओए जेहा चित में नित तेहा पाएन ओए ते हो जेहे दैव जाए। नानक दोही श्री खसम आपे वरत है नित कर कर देख।

कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हाथ तगे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यों करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम से आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो पला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सत सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वश के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे ना पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभु का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बख्त जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जमचू

तमाम दे से अपवित अमेद खला काम व्यापक सुद नर से जोरा पुछ चला। सतगुर के आख्या जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पला पौड़ी। तू वे परवाओ अथाओ है अकुल क्यों तुलिये सेवड पागी जे तुद त्याय दे जिन सतगुरु मिलिये। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है सतगुर की रीस है होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है ओना अंदर होर मुख होर है बिक माया नो चक मर्दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा सतगुर की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट विकार झूठ ओए आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार न लबनी किते थाए पाले जिना सतगुर का आख्या सुखावे नाही तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचरक वेरायन मनमुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे ओहो आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा जिना अंदर नाम निदान हर तिनके काज दे आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सबको वल सब दर्शन देख करे साबास। साहो पात साहो सब हर का किया सब जन को आए करे रह रास। गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर नेचल नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगतानो सदा रखदा आया। पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना तुझ जेवड़ मैं होर को दिस न आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कुटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे से कूड़ियार कूड़ा तिन माना नानक सच त्याय तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा अगो दे सत पाओ ना दिच्चे पिछो दे आखिया कम ना आवे अद विच फिरे मन मुख विचारा गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा सब कारा अंदेशा परम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अंदिन हर गुण गावे। महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख आखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे उद्यम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृत शरण आवे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किलविक पाप दोख ले जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बेंदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी जो तुद सच त्याय दे से विरले थोड़े जो मन चित इक अराध दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याय दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कडे मुख खोले मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा मल जूई परया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख है नो पाया पास न दे कोई बहन जगत में गू पड़ सक।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ऊना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिये ता जे किछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोका ले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होए।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत दुआई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वडे

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जेहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण तोया, गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया, जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा। वड पागिया सोहागणी जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए, पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत, जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा। सब रस तिन कह हृदय है जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया तिनको पौ कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे, ते हर दरगे पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे, ओए आप तरे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर वेल जन तिन वेख वेख हम।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए पौड़ी। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर तावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी। हों आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया।

सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाए रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पता।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठे रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन।

जन नानक अगम विचारिया पौड़ी। सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे। हौ बलिहारी तिन कहो जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगें गवे। जन नानक बोले सच।

दिया, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बनत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़

गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो अपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

चौथा मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अंकार झगड़ा कर दिया अंदिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड्डे। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतने नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किच सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंथ न पाई है फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेक दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुरु पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा हर।

विखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपताए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

फिर लो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया।

पंजवा वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसे प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात। पौड़ी लाहा जग में से खटे जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस। नेचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरे तिस

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया, जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हो।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। कोय सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत्स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पोरी परम वंजाए पिरी मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता, हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए उदा

पौड़ी। प्रभ बेअंत किछ अंत ना है, सब तिसह करना, अगम अगोचर साहेबो जिया का परना, हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना, मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना, जो तुद पावे सो फला नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवां।

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े ताड़ी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक मंत्र।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाओ मन मारन कारण बन जाये सो जल बिन भगवंत न पाये जे पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जल

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगें काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पात काहू स्यो नाही। पत

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्राप्त।

माया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने भी नाही। चार चरण कहे बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्वस छोड़ महारस।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया तो

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद कै पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गै मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम है। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ कै संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके। जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

उपाद उलट पाई सुख सह समाद आप पछाने आपे आप रोग ना व्यापे तीनों ताप अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यों गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

मन मद सूदन त्रिभुवन देव गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा बूजे बूजन हार सवागा रहाओ सूरज चंद करें उजियारा सब में पसरिया।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे पाए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियोर लाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल

सारे जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओ पत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग उनसे क्या कहिए जो प्रभु किए।

होई, कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए आपन कया न लेही। सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंत काल को पारी, राम नाम की गति।

जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया, अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है, गुरमत मनुआ अस्थिर राखो, इन विद अमृत पियोई है रहाओ। गुर के बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका, नेचल शिव कर बासा। तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है, यो जग बेद्या पाई, दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनुपव इक देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिप दे, उल्टत पवन चक्र खट पे दे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे, जिन जैसा कर्म

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत्व मिल दान निबेर है, टांडा उतरियो पारा। कह कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बने

पंडित गुणी सूर हम दाते एक हैं बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

जोड़न हारो सदा अतीता ए कहिए किस माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए विनाशी काको ठाकुर का।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी फिर पई तंती सूटस नाही अनहद किंगुरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई। गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कति आई।

महोए। जित कट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाए।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसार्यो रे हीरा लाल।

छोरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिल।

बिखे बाच हर रात समझ मन बौरारे निरपय होए न हर पजे मन बौरारे गयो न राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा परया।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है। रहाओ इस तन कारण शिव सनकादिक खोजत पै उदासी। मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा। जलत अम्ब थम्ब मन तावत परम बंधन पौ पागा। कहे कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्व हस्ती हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यो कप के कर मुष्ट चनन की लुब्ध ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो। रहाओ ज्यो उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हे ना कराओ लयो। तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो। तिन ही माए अटक जो उर्जे।

ठाकुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर।

आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता पौ जठर अगर मैं रहता लख चौरासी जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर।

पास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

पूर्णा पीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे। रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की पर...

0: कह कबीर इक राम नाम बिन या जग माया अंधा गौरी बारवा।
1: मन रे छाडो परम प्रगट होए नाचो
0: या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बहुरा अब तो जरे मरे।

वैकुंठ जाये, नाम पदार्थ मने बसाये, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा ची

थे तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न

बांधी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवायो।

चित हुए रहो तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई गौड़ी माई मोहे अवर।

दिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

सस बिगास संपट नहीं आवा, अर जे तहां कुसुम रस पावा, अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे ता

जोत्रे भवन तन माह समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा इहो थिर न रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दें उर्द निवेरा अर्दें उर्दें मंज बसेरा अर्दें छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दें उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जा...

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन मिल।

बल बल जे बिसंतना जस गावे, विसन मिले सभी सच पावे। वाह वाह वाही जानिए, वाह जाने एहो होए, एहो

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना।

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजय विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

हर त्यावें हर त्यावें तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाम तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े वो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुझ आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करें सो होई, तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ ना।

लागी मैल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रह लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मज्जन हर रस।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचल जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहा। अनत तरंग भगत हर रंगा, अन दिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कह।

अंध जीव रख नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चोखे।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे

जा पंच राशी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसियो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

दारी माई हर दर्शन बिन रह न जाए राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैरवे।

कै कोई जातिस पावे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सरवरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पहला लख लख

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कस्त जियले, कापड़ छोड़े।

नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेट लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिन रुदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

मां सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकुम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

किंतु आपके मां हडाव जो कुछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एनस्तूर नादन पत विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली ज्योत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन करथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं पासा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है

नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाने।

हर दर्शन पावे वडभाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा, गुर के दर्शन मुक्त दत्त होए।

गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख तां को लगे न पीर। जम काल किस नीड़ न आवे, नानक गुरमुख साथ।

माए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विध होए हर अपरंपर अगम

हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथो छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाए, करणी कीरत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

में दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत तन माया चितलाए चूत मोह पाखंड विकार राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अंगिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साथी।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साच समाए। हर तब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता वरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाणे, आवन जान रहे थिर ना।

मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे सत संगत मिल सब सो जी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पौना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आशा मेला तीजा पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुर गोविंद ना फिर मरे न आवे जाए पूरे गुरते साज समाए जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुर दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाए जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए ज्ञान रतन साचे सह सुनाए नावे जेवड होर पर नाही कोए जिसनो बक्से साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मेला तीजा नृत करे बहु वाजे बजाए यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सो जी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर्ष्यों चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवा काफी मेला तीजा ओंकार सतगुर प्रसाद हर के पाने सतगुर मिले सत सो जी होई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई मैं सहुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा से मन

पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई। आसा मेला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह

हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, कराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह धर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत खाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रवरिया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड़ पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण करमा।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यों मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पाक बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो।

हर सिंचो गुरमत जेत, जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जानी, हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा, कब को पहले कुंगरू ताला, कब को बजावे रबाब, आवत जात बार खिन लागे, हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बने आई, हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहाओ। कब को मेले पंच सत दायन, कब को राग तुन उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे, कब लग मेरा मन राम समारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पति ने ना पत होए, जन नानक हर हृदय सद त्यागो, ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा, सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे पाई, हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरम पर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए।

हम जिन नाम से आए हर गुण गाये, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाये, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआये, नानक आपे आप खुआये, गुरमत मन पर गास सच्चा पाये।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सको।

हम हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे करहल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा, बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे, रहाओ एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे, एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुनाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश, हम सतगुरु राखे दे कर हाथ, ज्ञानी की होए वर्ती दास, कर जोड़े सेवा करे अरदास, जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा, असमय ला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साद पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया। महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रैसो राति तन सुहागना।

चार जित गृह वसे सो गृह सो बावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परखाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टिचर कंत बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तौ सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इच पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सत परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख रिहाए।

अमर नौखण जीते सब थान तनंतर तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास पर थाके सिमरत वेद व्यास जै बैसो तै नाले बैसे सगल पवन में सबल प्रवेश है होची शरण पया रह न पाई कौमी ताहो कह कह जाई सुन उपदेश सतगुर पे आया गुर हर हर नाम मोहे।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा। परदेश साहिब सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया।

अमोल वचन अमोल आरास विश्व सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बख्शिंद यो सौदा गुरमुख किने।

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

पाको फूल काल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आशा मैला पंजवा हर लावे बिल लावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया। अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे। नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए। निंदक अग्नि माए जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते। सो नानक आप सुनावे भगत जना को सदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मगना पतियारा।

बस्तर भी कोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावाता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइश, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

तुझ पर दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अब सुंदर विचक्षण तू, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, इक तुके दूजा। जीवत दिसे तिस हर पर मरना, मुआ होवे तिसने चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटती बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला। क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल। आसा महला पंजवा, उतरी तेरी विध कर खाती, जान सत

बिस्ता अस्त्र रख परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे।

सब अंत ना जाने, पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी, क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी, जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

दूद जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर कातान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कह अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर पट्टी आया मिल सतगुरु तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जाई रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

कर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, द्वार करत चूठी लग जाता रहाओ, वजो साहिब का सेव बिरानी, कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम न आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, जो पावे त्यों कर प्रित पाला, आसा मेला संजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार गुरबानी लाल, दावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल सो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीक्षा दीन, प्रभ अविनाशी कट कट चीन, आसा महला पंजवा, अनद विनोद परे पुर तारिया, अपना कार्य आप संवारिया।

निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास तई मत पूरी ताते बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त और अंध

गुरु पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पाप कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे।

आज्ञा मान प्रगट हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उपारी। आसा मेला पंजवा दुख दे पई पाप तुमान दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे कित न काम, मिल सौत संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग और जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तब संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुख दाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मानिया।

आए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवां।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन मैं तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा से गुरु गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पन्नवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

धार अगद कर सास सास संवारे ना पोहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी रिद अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत सदा।

करम तरम जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंद को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निधान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक सच कीना।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मैला पंजवा बार तोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने कोए इहा काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम न सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने वेद शास्त्र को।

छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दा, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा। उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे रबाब पखा।

मुक्ते सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे, संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत नरक निवारे, नानक गुरुमुख जागे, आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस बुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज थूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

सबा मन की और किसके आग सुनाये बिन नामे सब जग दोराया नाम मिले सिपाये क्या कहिए किस आग सुनाये जे कहना सो प्रभु जी पास सब किसकी ता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस जे देह वड्याई ता तेरी वड्याई इत उत तुझे ते आओ नानक के प्रभु सदा

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुम्हारी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकीर्तन।

अवर के जाने ज्ञाना कूल चूक अपना बारिक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया काटिया रोग मां सुख पाया।

कोरते बां पकर गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

बिना सिर कन छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनिक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास दिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाओ, सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभ कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गा।

तप्त है दुख डेरा, हुक्म बूझे सोई परवान, सात सब ज्ञाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आशा मैला पन्नवा, जहाँ पठावो तह तह जाए, जो तुम देहो सोई सुख पाए, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगाए, रहाओ तुमरा दिया पहनो खाए।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवे संतै लग पाई। आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दूख रोग सगले मन लखा राव। कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय। दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जन जन की वाट न पाये। आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए। आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास। अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ। सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो। पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अनदिन चीना। आसा मैला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओह चौकुंत माने। दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे राव। जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहु न आवत काम संत प्रसाद का को जपिए नाम। साध संग मन सोवत जागे अब प्रभु नानक नीचे लागे। आसा मैला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहा प्रभ के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुर दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

आते पै मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभ का पावना लागा मीठा गुर पूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहू नानक प्रभ करी मया।

सत्संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सुकामा झूठा मोह मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी से रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला संजमा आपे पेड़ विस्थारी साख अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आपे सोई राव आपे सूर किरण विस्थार सोई गुप्त सोई आकार सर गुण निर्गुण था पैनाओ दो मिल एक कै कीनो ठाओ कहो नानक गुरु परम को खोया अनद रूप सब नैन।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए। कहो नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण ते आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभ शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू करवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण तास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म ता।

पान निसारे हो खिसर गयो पूम पर डारे हो साध मोहिला दी अंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आशा मेला पंजवा चरण कमल की आस प्यारे जम कम कर नस गए विचारे तू चित आवे तेरी माया सिमरत नाम सगल रोग खया रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को पहुँच न साके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दी जय आशा मेला पंजवा मन तृप्ता नो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद पली बनी जाके गृह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम दृढ़ाया।

तो जन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

तेरी देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग पानी। रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल ग्रे बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया। साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो तुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे। ते बैरागी कहाँ समाए, तिस बिन तू ही दुहेरी री। रहाओ उनके संग तू गृह में माहर, उनके संग तू होई है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विद्थाटी, उस बिना तू होई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक छाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

ना हमको तृष्णा, जाओ निर्मल ता हम जचना। हम किछ नाही एक ओही, आगे पाछे को सोई। नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पाठ कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए। पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान। सराई सुहागण जो प्रभु पाई, तिसके संग मिलो मेरी माई। रहाओ दासन दासी की पनिहार, उनकी रेण बसे जी नाल। माथे पाग का पावो संग, मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सब ने मां, कर्म कर्म अर्पो सब हो मां। गर्भ मोह तज हो वो देन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमुख निमुख एही आरा दो, दिन सरैन ए सेवा साधो। कहे कृपाल गोपाल गोविंद, साध संग नानक।

उपत हुए के राज समाया कर कर अनर्थ विहाजी माया संचत संचत फैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को जीनी काच गगरिया अंब मजरिया।

जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह बन

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मिठा माने, एक नाम संकन

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है। जिस मन उठा आप किस ना विसारी है। जो किस करे सो आप आपन पाणिया। भगता का सहाय जुग जुग जानिया। जप जप हर का नाम कदे न चूरी है। नानक दर्श किया।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

सारे साजन संत हमारे नीता बिन हर हर आनी तारे साध संग मिला।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक शरण पछानी।

देखत साधु संग हर हर नाम चराहो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किर्म अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे वस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विखकाटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम को नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणिए कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करें जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ना।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रस्मा से मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट। तू ही मोहिना कारण करना कारण करना। एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन। नानक सुख सुख सोएना आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला। रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक आसा दर्श प्यासा आन न पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम ते आवो हृदय बसावो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये सगले दुख जाही जीवन को दाता पुरख विदाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हो कर्म कमावे बांध्यो नलनी प्रमसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार।

जाए। प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संयम कर थाके। नानक साध शरण प्रभ संग वसै, आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ न आवे। पकर केस जम उठारियो, तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही। खिन पंगुना के मान माते, असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे, सुने नाही डोरा। निपट बाजी हार मुका, पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजे, परया दीवान लेखे ना परया। जिहे कारज रहे ओला, सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया। मान तान तज

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताँ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बड़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हा, दुर्मत खोये हा, दासे रेन होए हा, व्यापे दुख ना कोए हा, भगता शरण।

हर नाम जिन लय हर तज अन लगे हां जन्मे मर पगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल हुए हां नानक भगत सोए।

अब घट सरवर नावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तत् दिलोवे, सुगर सरवर मैल न कोवे।

सिरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुरु विचारा, अंतर पूजा

पार कमाई खसम रजाए अवगत नाथ न लख्या जाए। जल में उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

सोचतानी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारन हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुद नाल सबद मरे ता एक लिव लाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मान कहीर तू निर्मल सच गुणी गहीर

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सांच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख होए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग सो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल पाही बोरा बोराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे सेवड़ पागे नानक गुरु की।

गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन

मिले तह जाऊं। गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन

देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह कर आपे बिन गुरु शब्द मन नहीं थौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा रहाओ इहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुरु मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन तर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूरा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई इहो मन जोगी पोगी तप तापे गुरमुख चीने हर प्रभ आपे मन बैरागी हो मैं त्यागी कट कट मन सा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दर कर मैली हर

ग्रास इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभ आद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरुमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन गासा आसा मेला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ तनिक कामनी हेत गवारा दुखदा लागे नाम विसारा जिसको बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके।

अवर न औषध संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमृत पुरख गुर दर्शना देखे, विम गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही। जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ, बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

संचय तन जाए, बिन हर भगत न कभी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोक्सरिया तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

आई कहां सो तेग बंद गाडे रड़ कहां सो लाल कवाई कहां सो आरसिया मो बंके एथे दिसे नाही एहो जग तेरा तू गोसाई एक कड़ी में थाप उठापे जर वंड देवे पाई राव कहां सो करदर मंडप महला कहां सो बंक सराई कहां सो सेज सुखाली कामण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हर

ओनी तुपक तावन चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी ठकुराणी इकना पेरण।

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

जे चलदा लै चलिया किछ संपै नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे, वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो, धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो, तां वापा

निरंतर पंडित पांदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिर ही सेवक साध का गुरमत्ती लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर पगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

गुरमुख नाम पे आईये मन मंदिर पी जय रहा कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभ आई गुरमुख लोभ निवारिये हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है। लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही। नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला क्या जंगल टूंडी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है। गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

फरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साके पर थाई, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूटसी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाइए।

जिस आप कर आए नानक सिर दे छूटिया दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई पद निर्वाणी मैं ओ लगिया।

साहिब से मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म रजाई। हुक्म रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई औगुण यारे को गुण नानक सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां तुद पाणिया जो लग जियो परा।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जानसी, वेला सच परवान।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे हो।

जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समाणी आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द कीन सदा सुख पाया।

गुर सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे। सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उधरे कुल सभाए, नानक साच कह विचार, हर का नाम रखो।

कर कृपा नाम मनवसाए इहो सिर दीजे आप दवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तै आप कराए आपे गुरमुख नाम वसाए आप पुलावे आप मार्ग पाए सच्चा शब्द सच समाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मन मुख मोहे परम पुलानी बिन नामे सब फिरे बोराणी तीन पवन में एक काम आया मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया बहु कर्म कमावे दुख समाया सतगुर सेव सदा सुख पाया अमृत मीठा शब्द विचार आम दिन पोगे हूँ मैं मार सहज आनंद कृपा धार नाम रते सदा सच प्यार हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार हर जब पढ़िए हूँ मैं मार हर जपिए पै सच प्यार नानक नाम गुरमत।

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नो बक्षियन अंतर पंड

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किछ नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कारदार छोड़े अपना पर कर

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहा। बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई। गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई। नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई। नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई। जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई। नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई। जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई। नानक सब किछ नाम।

का बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों करवा आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना।

ते निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना इहो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पै पाए जोरते सिफ्ती सत समाओ। पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए तू बेअंत दयाल है।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागनी सदा फिर पाया हों मैं आप दुआए, फिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए, मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ न पाए, मैल नाही दुहागनी अंत गई पछताए, सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए, नानक जे सुख लोड़े।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

सफल जन्म हमारा, नाम नवैनित पाया परे अकुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा, गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी, बिन प्यारे भगत ना हो वही ना सुख वे शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल्दी।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पा।

गोविंद गर्व पया कर पांडे जिन आवी साजी चारण वाह तही किया कगह काल सेवक जे काल है शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे समकर जाने इन विद साहिब रमत।

पंडित आप थिया। छछै छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे, तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया। जज्जै जान मंगत जन जाचै।

तपस्या मन माही, टट्टे टंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा।

पाकड़िया बब्बे बूजे नाई मूड़े परम पुले तेरा जन्म गया अनहोंदा नाव तरायो पांदा अवरा का पा।

ममे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

तन पिरै मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे। सेजा सुहावी संग पिरकै, सात सर अमृत भरे। कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो। नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो। मुंद सहज सलो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम। मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम। प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै।

जप तप कर कर संजम था की हठ निग्रह नहीं पाई है। नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाई है। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया ताज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग जी

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफल्यो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर कै

भगत पाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा।

गुरमुख हुकम पछाणे जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे इव कहे नानक सो बैरागी आन दिन हर लिव लावे जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले मन सियाणप छोड़िए गुर का शब्द समाले साथ तेरे सो सो सदा है एक दिन हर नाम समाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे।

का दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

लाहा हर नाम ले जाहे, नानक मन तन अर्प गुर आगे, जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया, निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परे पंडार।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहेथा गुरमुख पार लंघाई, हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर परचय गुर परचय।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाए, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारया ते मनमुख मूड अप

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंस दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरुमुख।

राम मन इकत कर आने सब गत नित जाने हर रामो नाम रसाए जन की पैज रखे राम नामा प्रहलाद उधार।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया।

करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया।

जियो हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम हर जपिए सतगुरु पाए जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई परम चूका आमन जान जियो आमन जाना परम को पागा हर हर हर गुण गाया जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे हर हर नाम समाया जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया तिन सफल जन्म परवान जियो हर हर मन पाया परम सुख पाया हर लाहा पद निर्वाण जियो जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना ते उत्तम हर हर लोग जियो हर नाम वडाई हर नाम सिखाई गुर सबदी हर रस भोग जियो हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया से तन वड्डे सतपुरखा पूरे जिन गुरमत नाम ते आया जन नानक रेण मंगे पग साधु मन चूका सोग विजोग जियो जिन हर मीठ

अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सताई, हर दरगे पावे मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे कर्म त्यान जियो, तेता युग आया।

कल युग हर किया पग त्रैक किया पग चौथा चिके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद देवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो,

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले।

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखा।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सहज सुभाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आम न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते, जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे, माल खजी ना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है, हर सांस गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा, चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे, ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला, आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा, हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दुध न्याई रीत अब दुध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे, खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये। जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे, कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो, हर प्रीत करी जय इहो मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुरसो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा, कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए, कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशी के हम पाहुणिया, अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो कीती है, कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी तेह सिवे यो मन लाल दी जय, मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया, अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी तां जिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे, कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे, नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत। जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना, कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते, दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार, चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे
लक्ष्मी अनक पांच गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूरत आवे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिये संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक पयम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये पवित कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगाश दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै पवित वचल हर बिद आप बनाया आशा महला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कह गे हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार शोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का के अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के

गोविंद सिमरन ला गया, परम मोह विकार दूजा सकल तिने त्या गया, मन शांत सह स्वभाव उठा, अनद मंगल गुण गाया, नानक वखाणे गुरबचन जाने, जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। आशा महला पंजवा श्लोक हर हर।

छेंटे। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान से आगो तुम दया। कतहु न तावो शरण पावो, करुणा में प्रभ कर मया। समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप पावे। किसे जोबन बले जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रभ मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तय पौन। नाम तारीफ उधारे पगते संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। बसुद कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पवन। बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। नेको पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुख मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आमन सब रहे। अगन सागर पै शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रया, कट कट वासी आप विरले किने लया। जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नाम कराव रया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप तरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगत मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन चुपनी, कुल संभुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आशा मैला पंजवा, छंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत चंत। पिन्नी रैनड़िय चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिन हंस नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी, चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई, संजोग सा शुभ गणिया। बिन हंस नानक मिले श्री पर, सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुड़ गुपत अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन, आपने प्रभ पानी। बिन हंस नानक रंग राती,
प्रेम सहज समाने सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा सारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटाउड़िया तै क्या चिर लाया मोलत कुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया

ने अंत जाई पाया, बिन वंस नामक सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया। नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन। परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब सजे। गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंस नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निध सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा। गह पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता किया। साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी बहुर जमना उपारा।

पासे संग देखे करणहारा काय पाप समाये सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा सब किस दे रहा हर देवन हारा दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है मिल साध संगे पद न संगे कुल समूह आतारी है शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा खोट न की चई प्रभ परखन हारा पूर कपट कमाऊ गड़े जन्म है संसारा संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया तब काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर कुंडौरड़ी अब फिर किछ नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वद पाग पाइए सुख सहज समा

कमलाप्रम पीत कमलाप्रम पीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिचरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रे बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अपतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमह संग

सुंदरतम ज्ञान सुंदरतम ज्ञान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राशतमान प्रभ मान पूरन दुख बिजीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन रंग नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज है की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिया करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नान सत्य आन सच जो मर जमे सो कच नि कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाने कड लए इक ना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आखरे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक्त कड्डे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़िया मोका ले दो जुकचा लिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम वालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आलपताल, लख क्या के मुंडड़े लख क्या के हार, जित तन पाइये नाम का सेतन होवे चार। ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाइये होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ी। नदर करें जे आत्री ता मदरी सतगुरु पाया, एहो जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु सब सुनाया, सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुवाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप दुआया, जिन सचो सच बुझाया। श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी दर्शन तर चंद सूरज अवतार, सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल। महला पहला। वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपौ निरंकार सच नाम जाका की आ सकल जहां, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो, सिक्खी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत, लाटू माधानिया अनगा पंखी पौधिया लैन नसा, सूए चार पुआई जंत नान पौधिया गंत नंत, बंधन बंद पुआए सोए पै किरत नचे सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाए सिद्ध न होए, नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी। नाउ तेरा निंकार है ना ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब तिसदा देखा जाए आप गवाइए, जे लोड़ है चंगा अपना कर कुनहु नीच सदाइए, जे जरवाना पर हर है जर वेश करें दी आइए, को रह न परिये पाइए। श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार, जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार, इक होदा खाए चले ऐथाउ तिना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार, कोई जे आखे सो तू है जाने तिना बे तेरी सार, नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया, सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया, हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिये हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सीख होवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे तांदर सूझे, ज्ञान में होना कब तक लूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेख है तिहा वेख। महला दूजा। हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्फ बर्फ, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किस खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी। अगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर को न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताड़ी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैते आए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कप्पड़ कूड़।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी तर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो वे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज जग नाम का सच्चा वेखे सोए सवनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता कह वश किच नाही तुद वेखी जगत उपाया इकना नो तू मेल लै इका को तुद खुआया गुर कृपा से जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दासु है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा।

दुर्बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़िया हो वह गुनेगा ताऊ मी साधना मारी है, जे हाँ काले कालना तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गए आहारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सब जुग रथ संतोख का कर्म अग्ञ रथवाहो, त्रेतय रथ जतय का जोर अग्ञ रथवाओ, द्वापर रथ कपय का सत अग्ञ रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्ञ रथवाओ। महला पहला। शाम कह सितंबर स्वामी सच में आठ साथ रहे, सबको सच समावे रिक कह रहा परपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कौ कर लावो गोबर तर न जाए, तोती टिका तय जपमाली तान मले चा खाए, अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहे तरंगा महला पहला, मानस खाने करे निवाज, चुरी वगाने तुन गलताग,

पंड मुआ पंड पालिय पंड हो वे बंगान, सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बाहरा एक को सच्चा सोए। जित मुक्सदा सलाही है आवरती चार, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार।

का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के पले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले का पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही सहतारी है देखे पीता अपना तर्क ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी।

कबीर जियो। गुर चरण लाग हम दिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जब उपजय दिन से कहो मुहे समझाया, देव करो दया मुहे मार्ग लावो।

अब मन सुन ना लूके, आपा पद निर्माण ना चीनिया, इन विद अभियो न चूके। कभी ना उपजे उपजी जाने, पाव अपाव बिहुना, उदय अस्त की मन बुध नासी, तो सदा सहज लिव लीना। ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण परम पागा, तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया, तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया, लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। ऐसे संत ना मौके पावे, डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे।

तेरी सगलिया की हौ बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस तेरी हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे, नाको काटी कानो काटी काट।

मद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ चिंता ज्ञान ध्यान कर सुई शब्द तागा मत काले पंच तत्व की कर मिर्गानी गुर के मार्ग चाले।

दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तै कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे तुम करी न रखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी माँ पिता को काको कवन पुरुष की जोई, अब कूटे को बात न पूछे काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई, लक्ष छुटकाए त्रिया रोवे हंसी के ला जाए, कह कबीर।

आसार होगनहार हो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीस पर कंपन लागे नैनी नीर असार है। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए लै न गयो, आई तलब गोपाल।

बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन रासन को दिया, मुगद कहे तन मेरा, जम कर बंड मूंड में लागे, खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाच तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई, सत्तर का बाकत ही पीतर जेकर जाने कोई। निवाज सोई जो न्याओ बिचारे, कलमा अकल है जाने, पाचो मुस मुसल्ला बिछावे तब तो दीन पछाने। खसम पछान तरस कर जी में, मार मनी कर फीकी, आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की। माटी एक पेक तर नाना, तामे ब्रह्म पछाना, कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना। आशा जगन नगर एक बूंद न बरखे।

कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पहे संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप आपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्याव जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल कैठी जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या करो भाई जिन सास पछान्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा ते सर्पनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई ए बस्ती का बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आशा कहाँ सुआन को सिमरत सुनाए कहाँ साकत कह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहाँ कपूर चराए कह बिशियर को दूध पियाए सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत ले ले नीम सिंचाई कह कबीर ओआ को सहज न जाई आशा लंका सा कोट

वासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपड़े तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कटू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला

रहाया। दस मास माता उधर राखिया बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया। रहाओ बारिश ते बिरध पया होना सो होया, जहाँ जम आए चोट पकड़े तबे काहे रोया। जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा। आसा तन रैनी मन पुनरप कर हाँ, पांचों तत बराती राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा। मेरे गृह आए राजा राम पतारा, रहाओ नाभि कमल में बेदी रचने ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय सो दूलो पाया असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना। कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना। आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली नंद गहेली देवर के बिरह जरोरे। मेरी मत गौरी मैं राम विसारे हो, किन विद रहन रहो रे। से जय रमत नैन नहीं देखो यो दुख कासो कहो रे। रहाओ बाप साव का करे लड़ाई माया सज मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी। कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कब हूँ न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे। तू बामन मैं काशीक दुल्हा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कुपत राजे हर्षो मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समानं साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधानं बाबा माया।

कोई आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदिर।

रोजा कर मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे है आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है रहाओ साच कतेब

गचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। आशा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहरते ही है बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुना।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई।

मरम ना जाना, सब जग अंत आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतना पसरियो ताना, तरन आकाश की करघ है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना, कहत कबीर कारग है तोरी, सूत है सूत मिलाए कोरी, आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाए, हर का संत मरे हारंबे ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कह कबीर नरक।

भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम त्यावो। सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा ते ना भाव सी। रामा भगतें के

प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जान है पांची के तक आस मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ।

काल पास अदब लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही आशा। तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सन तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मकतूल सुपेद सपैयल,

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो।

हर हर हर हर हर हर हरे, हर सुमरत जन गए निस्तरे, रहाओ हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है, रहो जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

क्रमत सुरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ज्ञान मान मन एक मए, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने

आदि माया। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

कर रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करें नित चगरा दो लोचन क्या हेर, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे।

पाए जित कम हर विष रह दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविय मना जित सेविय गोविंद प्रीत उपजे अवर विसर सब जाए हर से की चित गहर है जरा का पौ ना हो गई जीवन पदवी पाए रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुरु का पाना चित करे सतगुरु आपे कृपा करे गुजरी महला की जा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहा सेव बनी जियो राव हर मेरा सुमृत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधक हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साथ अंत होए सखाई हर दिन होर रास पूरी है चलदिया नाल न जाई हर मेरा तन मेरे साथ चाले जहाँ हो जाऊं तह जाई सो टूठा जो टूठे लागे सूठे कर्म कमाई।

जाओ सतगुरु मिले हर मन वसे सहजे रहे समाए रहाओ जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए से मुक्ते जे मन जिने फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रह करे त्रिभुवन सो जी पाए नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

अंत गया पछताए। क्यों मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीरथ तिस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुरु मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा भूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह है। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सरदार।

प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पगस पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम ते आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नाम हर सो चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जो पै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभु पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो आप कराए जिनकी भगत मेरे प्रभु पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाए

गया, शैल पत्थर में जंतु पाए, ताकार रिजक आ गया कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे पास ठहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर, काहे मन पौ करिया।

हारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा शासक वेद सिमरत सब सोदे सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुकत न को पावे मन वेखो कर बिचारी असच मज्जन कर स्नाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परदासी जन नानक गुरुमुख तारी गुजरी महला पंजा।

नवनिध पाई आश्चर्यो हर प्रकार खावो खर्चो टोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो वो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

कहाओ। देश कमावन तन जोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे जमपुर ऊठ सिदास। होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस को जानाते, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खाते।

सुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है कित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सेन साथ कित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सुमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुम

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथिया लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंदक सुत पाई, संग बनता रथ हसया, जब अंति

बंधन टूटे। ओ कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई बरंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाद कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रखा नानक को।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिल वर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहो नानक तिस गुर बलिहारे, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पन्नवा, मात पिता पाई।

सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सलाहे।

चित चित वो हर रसन अरादो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपे नानक।

हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार मिटी ब्याज सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार अंगीकार कियो मेरे करते गुरपूरे की वडियाई अब चलनी करी गुरु नानक के नित नित चढ़े सवाई गुजरी मेला पंजवा कबहू हर सो चीत ना लायो।

मिथ्या। पाज सदा भगवंत रहाओ, नाम एक आधार भगता, एक आगत एक कर कृपा गोविंद दिया, गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री कर, शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवा।

पितै सगल उपाद रहाओ। मात पिता सुत वीत पाई तिस बिना नहीं कोए। ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रविया सोए। कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम। शरण साधु निर्मला गत होए प्रभ के नाम। अगम दयाल

पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रुद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत सर्व विद प्रमते पुकारे कत नाई छोट हर चरण शरण अपार।

परमा निर्मल गुण प्रभु गाए। गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी, कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी। आठ

सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे। पार जात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला, सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बोत जंजाला। सुन

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिए सुख पाई है तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभु दाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभु नायक देंदे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंत

ताको काल नाही जम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर तै नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चात्रिक अमर।

पिलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाचे ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर पग

सोग बिजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुरु वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम ना अदुआर आए। अनदे मूले नाथ सिर नाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

भगत प्रेम अराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सर।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मन सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ

निरत करी ऊ मन न चाई, गुर प्रसादी आप गवाई। चित थिर राखे सो मुक्त होवे, जो इच्छी सोई फल पाई। नाच रे मन गुर के आगे, गुर के पाणे नाचे ता सुख पावे।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

हरन मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त

विदार मानते उधर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणंग परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा, अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा, साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम में ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन दुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के

पौड़ी। माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी। अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी। हर हर नाम त्याई है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन तो मैं गल हो रहा, निक्षा क्यों कर जाए।

कोई सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जीओ सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हौ मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यों चित न लायो नाम नव स्यो मन आए। त्रिग इवे हा जीविया क्या जुग में पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपिया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय कितै न पाइए हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अगन बुझी हर अमृत सरना।

छड़ जाए। केसनों कूड़ बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। होता माया मोहया, फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जीए सेती रव रहा, जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाईए, मन मुख पले न पाए। तन वपारी नानका, जिना नाम तन खटियाए। पौड़ी, मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा। सब जग तिसके वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाईए नेचल तन तीरा। कृपा ते हर मन वसे, पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया, सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा, त्रिग तिना दा जीविया। जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मन मुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा, मन मुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा, कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई, मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए।

विच्चों उतरे सुख वसे मन आई, सदा सदा सालाई है हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा, जे सतगुरु सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सांत वसे जप

ने हर सुखदाता मन वसै हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल ना चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अन दिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम ते

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वडभागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चै शोभा पाई पौड़ी। बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लबनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह।

जात ना जायसी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरुमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरुमुख अमृत पीवन।

सेवा भगत बनी जाए, हर कै पाणे हर मन वसे, सहजे रस पी जाए, हर कै पाणे सुख पाई, हर लाहा नित ली जाए, हर कै तख्त बहालिए।

वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए, वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे, नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी, सतगुर ते सच पछाणी है सच है समाणी, अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी, गुरमति हर

अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समा।

अचिंत रहो नानक लग पाई श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी। आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट। आपे सागर आपे

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काडिये विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साथ जना कै संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किच तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौ तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर मह पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएन वज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर बिशन अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा चंग्याई आलक करे बुरियाई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तै सह टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नवनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहालिय मोहि निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है। श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को करम तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख सह आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने। श्लोक महला पंजवा।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभी थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हौं टूंडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दूख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोले त्या हुक्मे बुज निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछियां फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहां सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ सरनाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लद्दम लब्बन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप आपे लयन छाए बंधन सगल काप
तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा अपार खसम जिस लेप न कुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जा को पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल मई अल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामी रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरियाम किने न होड़िये फौज पानी हाथ पंचा जोड़िये दस नारी औ दूत देन चमोड़िये जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िये त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़िये परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िये गुरपुरा आराद बिखम दल फोड़िये हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़िये। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजे नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटिया पूरी होवे जुगत हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे होवे मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाह वाहो जिन हरस्यो जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आये चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना जो तेरे रंग रखते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही ना होए कट्टे कट सारिया
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किस आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी नह पवे, सब किच करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया खसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरुमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लेओ मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता एक रघुराई।

सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुर मिले।

मले ना लाछे पार मलो, पर मलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई, रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया।

कहे रविदास कवन गत मोरी, गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना, काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ, कर कर खाया पिंड बंडाया, चिंता मुंडा माया, ओम मसान की पसम लगाई, गुर बिन तप्त न पाया, काय जपोरे काय तपोरे, काय बिलो वो पानी, लख चौरासी जिन उपाई, सो सिमरो निर्वाणी, काय कमंडल कापड़िया रे, अड़सठ काय फिराही, बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे, अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, बेसवा जोन वल वल अवतरे। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वल अवतरे। अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे, प्रेत जोन वल वल।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

लतरी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रियो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है। गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है। गुरु प्रसाद।

बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभु तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर कूट जमत है किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ। जिनका हृदय नाहे हर स्वामी तिन बिगड़ रूप बिन रखती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओहो हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चकती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाइए प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याय रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाय। कट अब घट गया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंक ना कतु पाई है। सुखदाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाये। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साध सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर तेर तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाहे ना का बोल करत। निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता।

ए वहां दर्शन दुख पारियो, नाम जपत महासुख पारियो, चिंता रोग विदारियो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिसारियो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारियो, देव नारी मन सगल स्यान रही, कर्म करावन हार स्वामी, नानक कोट गही रहाओ, आप नेक पय शरणाई, इन मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, परम अंधेरा नहीं, जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे, शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप उठापन हारे, कुदरत की मना पही, देव नारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहु जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है, राम नाम रसमाते, महाकिल्बित कोट दोत रोगा, प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया, नानक गुरु चरण पराते, देव नारी पंजवा, सो प्रभु जत पत पेक्षो नैनी, सुखदाई जीवन को दाता, अमृत जाकी बैणी रहाओ, अज्ञान अंधेरा संति काटिया, जीव दान गुर देणी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी, तरम तरम किछ उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियानक संजम नानक, लागो गुर की चरणी, देव गंदारी महला पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के पाहा रहाओ, खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एहो निधाना, जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम निसाहा, देव नारी महला पंजवा, मन कह अहंकार अपारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभु राखो राखन हारा तर कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभु नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांस सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिलाते।

पंथ लाए उधारो देवगंधारी महला तुम्हारा। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिल रहनी जी प्राण से प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाश प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा। आजवाद पगत जन सेवक ताकि बिखे अधारा तिन जन की तूर बांछे नित नामक परमेश्वर देवन हारा। देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जा को उपजी छोड़ न कत हूँ जाता रहो बैठत हर हर सोवत हर हर हर वस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन की नो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकी नो सौत विदाता सगल समूह ले उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दोए कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार। इको अंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पे बिनो कहया पे कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाऊं साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजै कर संतन का चेरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अंग नानक एह लही है। राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कथु जाए अनक अनक पांच बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर पाग सोग

संजमा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस मोसे भी किस आराधी जो दिसते सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आछे आय पयो नानक गुरचरनी।

थारे कहो नानक प्रभु मिले मनोहर मन शीतल बिसारे। देव गंधारी महला पंजवा। हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ। साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे, टूट रहे हम ऊंचा रहाओ, बहु व्यंत अत बड़ो बारो, खा नहीं अगहूचा, तोल न तुलिय मोल न मुलिय, कत पाइय मन रूचा, खोज असंख्या अनिकित पंखा, बिन गुर नहीं पहुंचा, कहो नानक कृपा करी ठाकुर, मिल साधु रस पूंचा देव। गंधारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ब्रह्मा मुकुट पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो।

आओ कह पे थारो हो कर कतराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर सर्व मेरा ताकि शरण आसर प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साक्ष

नैक ना कहो करे, शीख सिखाए रहो अपनी सी, दुर्मत से ना करे रहो, मद माया के कहो बावरो, हर जस नैक उचरे, तर पर पंचे जगत को ढके।

ओ चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने संगत सिख गय हार्यो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत।

चरण काहे चितलाए। राग बिहागड़ा चंत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर नाम से आई है मेरी जिंदगी गुरुमुख नाम अमोले राम। हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से तोले।

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी है मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी है मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सह।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हाँ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल।

हर अमृत दिखले जाए राम, मन सुखा हया होया मेरी जिंदड़ी, हर हर नाम ते आए राम, हर साज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन भेदया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुख खीरे राम, हर दिन शांत ना

जम नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिग बांधे हो मैं जाने राम ज्यों पंखी कपो

ये गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वड पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर

अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिया पाप गवाते राम। पतित पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चहु कुंडी चहु जुग जाते राम। हौ मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर शरणाते राम।

जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी ए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी ए, तिन संत जना जयकारो राम, नाम तुहार।

तर्क पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राग बिहागरा महला पंजवां अत प्रीतम मन मोहना कप सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

खान पान सिगार बिरते हर कंत बिन क्यों जी जिए। आशा प्यासी रैन दुनियर रह न सकिए इक तिले, नानक पयम पे संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रयो संग दर्श न पाये राम, अवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, तम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाये, नाम पयम पे संत सरणी मोहे दर्श दिखाये। संतन के प्रसाद हर हर पाया।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरत मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

नानक शरण समरथ स्वामी तैज राखो मोरे, जाके बिछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीचे, कल्याण में प्रगट भये सेजा सुहावी।

सतगुर कह तै पन ना करियो रहे अंक समाए। अन दिन सहसा कदी न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्ला का किसनो ध्यान दिया किव निमत करी मुह मोड़ी है जिन हर च आया किसनो सर्व कल्याण होए नित संत जना

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए सब किछ देखे तिसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख

कहे कथिये न पाइये अंगदिन रहे सदा गुण गाये जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाये आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैर च निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला की जा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख मा

तो पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग है स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे ना रजै, तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पाया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न पुल्ले कभी, सब सच कपाव से सच किया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा, हर नाम न सुमरे।

लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो, संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी, अग्गे हर्षो केल करे हो पौड़ी। आपे पार अठारे बनस्पत, आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे, आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता, आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा, आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की, जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा। मानस परया आया, मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी। सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

पौड़ी। जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है, आपे सतगुरु मेल सुख देवे, अपना सेवक आप हर पावे।

हुक्म पाया भी सतगुरु चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरसा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनु दे जिसनु कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बिन्या आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा।

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्म।

सतगुरों गुरमुख नाम प्राप्त होए, तिस जोगी की नगरी सबको वसे, पेखी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी, जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

सतगुरु मोह को हर दिया, सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करू की दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण रवे, हृदय नाम वसाए, अवगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए। सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किछु न जाए, नानक आपे वे।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम से आया रहाओ। ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी।

गुरुमुख जाप पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच

ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लै रजाए। रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए। कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर। नानक सेवड पागी जिन हर

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभु सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभु

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का

कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले। सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर तेती

रहाओ लाख भगत जाको आराधे लाख पति सर तप ही साधे लाख जोगी सर करते जोगा लाख पोगी सर पोगे पोगा कट कट वक्ते जाने तोरा है कोई साजन परदा तोरा करो जतन जे होए मेहरवाना करो जतन जे होए मेहरवाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पे आया दुख परम हमारा सगल मिटाया महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा वडहंस महला पंजवा तन सो वेला जित दर्शन करना हौ बलिहारी सतगुर चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब पर पुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिसे जनावो तिन्हे तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रव दूरे जिसनो नजर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु से आये रहाओ रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ पै निहाला जत कट पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंजा।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हौ वेता। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेशा। मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बेसा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए। हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खट्याए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे।

नाइए नाता को प्रमाण सच कमाइए जब साच अंदर हुए साचा ताम साचा पाइए लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए जिथे जाए बइए भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया सुख मन में आए वस्या जाम मैं फुरमाया नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना जो दे सेना मने कहना आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब उपाय है आप आपे सर्व समाना सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवा

चल एहो कभू ना जावे, चाकरता तेरा सोए होवे, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे, जब

करो कृपा ले हो जमो बारे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हो आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा लह

आप वाणी तिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास।

सतगुरु प्रसाद। अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी, हर हर स्यों निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया, सातन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी, नानक सातन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख अधूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये, फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता, तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे, नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुइये, जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो मुइये, जिनी विच्चों आप ना गवाया, जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने, सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने, कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया, नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया, हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए, हर वर रावे सदा मुइये, निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए, सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला, अंदिन कंक सवारी हर वर सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए, नानक कामन हर रंग राती, जा चले सतगुरु पाए, वडहंस महला तीजा, गुरुमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम, अंदिन नाम वखानी है लाहा, हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजे, हर रावी जय, अंदिन नाम वखाने, गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपे आप पछाणे, गुरमत पाई वड्डी वड्याई, सच्चे शब्द रस पीजे, नानक हर की भगत निराली, गुरमुख विरले की जय, गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए, हर लीजे शरीर जमाए राम, अपने कर अंदर रस कुंच तू लाहा ले परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा हर नाम से आए, मन वसाए बूजे गुर विचारा, मन मुख खेती वणज कर थाके, कृष्णा पुख न जाए, नानक नाम बीज मन अंदर, सच्चे शब्द सुहाए, हर वापार से जन लागे, जिना मस्तक मणि वड पागो राम, गुरमति मन निज कर वस्या, सच्चे शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक पागो सच बैरागो, साज रते विचारी, नाम बिना सब जग बोराना, सब दे हो मैं मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे, गुरुमुख नाम सुहागो, नानक शब्द मिले पौ पंजन, हर रावे मस्तक पागो, खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम, गुरमति हुक्म बूझिए, हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा, सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच सवारन हारा, पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई, कहो नानक नाम निरंजन, अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई, स्वधंस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वसे, कोहे ना सके जम काल जियो, काल जाल जम जोहे न साके, साचे शब्द लिव लाए, सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए,

फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच वस

सब बरल है, दूजे पाए कुआई राम, माता पिता सब हेत है, हेते पलचाई राम, हेते पलचाई पूर्व कमाई, मेट न सके कोई जिन सृष्ट साजी, सो कर वेखे तिस जेवड़ अवर न कोई, मन मुख अंधा तप तप खपे, बिन शब्द सांत न आई, नानक बिन नावे सब कोई पुला, माया मोहे खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे, रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड़ अवर ना दाता, सेवा लागे सेवड़ पागे, जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे, बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए, जो जाए पवे हर शरणाए, जो हर मत दे सा उपजे, होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू, आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर न पाई, गुरमुख हर रस चाखिया, दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया, कर मैं निज कर पाया, सतगुर दे वडाई, नानक जो नाम रते सही महल पाइन, मत परवान।

राम दृढ़ाए जप हर हर नाम विकसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर

हर हर नाम मेरा प्राण सखाए, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हो वारी गुरसिख नी प्यारे। हर आपे पुरुख निरंजन सोई राम। हर आपे मूले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक।

हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम सिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बिना

निफल जन्म किन बिछा गवाया, ते सापत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श ना करियो, जिनी हर हर नाम ना प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया, हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वधंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाते पाप संताता। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर गतिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विकंपयंगा अनुतरंगा गुरुमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर

महामार्ग पंख बिखड़ा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै सा तन सा वासै, तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ देहड़ कोड़ी दिखम लगाए, मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरा।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करते है, हर राम नाम बखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु, हर भगत हर जन मंगिया, जन कहे नाम सुनो संतो, हर भगत गोविंद चंगिया।

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहजे जीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता। कहो पाना ता कृत अघाए राम।

जिन हर हर रसना पनिया राम सो सह सुहेले गुणे अमोले जगत उधारण आए तह बोह सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन कहो कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक।

आकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सहज समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सत गुरु बाणे श्लोक।

जन सास अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम दिनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा।

मैं वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा। श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया, नानक जाने सत साईं।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये। राम मन इच पाये प्रभु त्याये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया।

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छडावन हारो आज कल कर दिया काल दिया पे दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

लेख लिखाया लिखेड़ा साहा ना टले जेहड़ा पुरब कमाया बह खाते लिखिया अमृत लिखिया जित लाया तित लागा कामण यारी कामण पाए बहु रंगी गलतागा होची मत पाया मन होचा गुरसा मक्खी खाया ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्दे ना जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का पौच।

मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाए, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर से ती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाए, गुरु

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए।

हर। गुरु शरणाई उबरे भाई राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही, होमे जगत दुख रोग व्यापिया मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे, नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताक बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिले ता

महला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वरतदा प्यारा आपे आप अपाहो बनजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप तराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पत्तन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेख है पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्खुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यार।

नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाओ, आपे जल फल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सबना रिज्क समाहदा प्यारा, दूजा अवर न कोए, आपे खेल खेला।

आपे करे सो होए, आपे अलख न लखिया प्यारा, आप लखावे सोए। आपे गहर गंभीर है प्यारा, तिस जेवड़ अवर न कोए, सब कट आपे भोग वे प्यारा, विच नारी पुरुष सब सोए। नानक गुप्त वरतदा प्यारा, गुरमुख प्रगट होए। सोरठ मैला चौथा, आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप थापे, आपे वेख विकसदा प्यारा, पर चोज वेख है प्रभ आपे। आपे वंशन सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस त्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे। रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरह प्रभ आपे, आपे जाल बतायदा प्यारा, सब जग मछली हर आपे। आप अपुल ना पुलई प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप बजाए आपे। आपे जोगी पुरुष है प्यारा, आपे ही सब तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभापे। आपे नाम जपाएंदा प्यारा, आपे ही जपदा पे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलाहदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापे। सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया, हर हर नाम निधान है प्यारा, गुर पूरे मीठा लाया। रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया, आपे हुक्म वक्तदा प्यारा, जल माटी बंद रखाया। आपे ही पौ पाएंदा प्यारा, बन बकरी सिर हडाया, आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया। आपे ही आप वरतदा प्यारा, तै अग्न ना सके जलाया, आपे मार जीवाएंदा प्यारा, सह लेंदे सब लवाया। आपे तान दीवान है प्यारा, आपे कारे लाया, जो आप चलाए क्यों चलिए प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया। सोरठ महला चौथा, आपे सृष्ट उपायदा प्यारा, कर सूरज चंद चनान, आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान। मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुर न आवन जान। रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराएंदा प्यारा, आपे सच निशान। आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान, आपे सेव कराएंदा प्यारा, आप दिवावे मान।

कया थां पे आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरख तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम।

ओका हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस तराकत होए। कोट मदे जन पाये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

जिहो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना ने बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्द अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साकत का बकना यूं जानो जैसे पान चुराई कोट पराध अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

अनक पांच कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापुरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस प्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा पारी मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा पेट्यो वड़ पागी मने पया तरगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है भी हो नहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे, नानक को गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेख है सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लहिए। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोगृह अंग कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा सर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अभाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जिस पर दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल सामग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो कर्म पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहु बात है, एहो खसम का किया, जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना कर तू धारा, कहो नानक गुर बिन नहीं करिए, एह पूरन तत बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा, किलबिक काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त फुगत जुगत सच पाये, सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई, करण कारण

सागर सर्व गटाबर पूरी रे देखत सुनत सदा है संगे मैं मूरख जान्या दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुर अपने।

ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करिया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परिया। जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन।

प्रत्येक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम से अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा

संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा कर्म राय अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगद कै श्रोते हर नामा मुख

हाथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग।

मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस ताके, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की छिप जाई। नानक दास ताके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने। जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने। रहे न कछुए छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक बिकारा। बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा। देख वाड़ अनक पर्दे में परदारा संग खाके। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई। काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सूरत महल

गावत अचूक अविनाशी हम दिन हर रंग जादा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो कब हुआ बेली सोरठ मैला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहा बताओ सारी जित हो में गर्व निवारी रहाओ सर्वपूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी कट कट माधो जिया। संतो कट कट रहा।

सतगुरु परम चुकायो स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जाके सिमरण होए आनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जाको नाम ले तू सुखी साथ साथ से आवो ठाकुर को मंथन जीरे मुखी रहो साथ पावे होवे मन शीतल अजन नाम कर दुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल से पवन रुखी सूरत महला संजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ विसर नाही कब हुए ते ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी जन नानक पते न पावो सूरत महला पंजवा जाके सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई इस प्रभ त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिलना।

पावै। सोरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी सात संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण शरण मोह चेरो, रहाओ बेसुमार बेअंत स्वामी।

अपार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ, अंतर बाहर थाम थरंतर जत कत पेखो सोई, नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा, सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

और सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता, रहाओ आनंद बिनो।

नानक सदगुरबान। सोरठ महला पंजवां, दुर्त गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरज संवारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। सतत उदाहरण सतगुरु मेरा, मोह तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवां, बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बिदारे, गुरपूरे की सरणी उबरे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, पाप उतारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा धार रहाओ। सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच सबद सत पाखिया। सोरठ महला पंजवां, तय कृपाल स्वामी मेरे, तिथा तय दरबार, सतगुर ताप गवाया ताई।

हर के चरण हृदय उद्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई।

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरत महला पंजवा जी जंत्र

आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नान रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराठत लाथे मिल साध संगत कै साथे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय हम दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रख।

आया हर संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभ मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी के संग सहाई रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रहने

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपा।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सुवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती होरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा

तू आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीव है प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई,

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बंत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, ए पुन पदा।

हर के नाम की वडियाई, आप पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

सतगुरु की वडियाई मन इच्छे फल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जंत सब पै दयाला प्रभ अपने कर दीने सहज सुभाए मिले।

प्रभ अपनिया संता देवै हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुवाखिया सोरठ महला पूजवा सोई कराए जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रत

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श।

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाक रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, हर दास सुनी पग

हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

वाला प्रभ सतगुरु दीन दयाला कैसे ओसे रखवाला प्रभ सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

हाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमा।

हारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा ऊखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। ऊखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे। ज्यो माता

सूरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ। बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा।

गुरपुरे ले तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे। गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे

जिसनों बख्श लै मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंद।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रचपच, रैत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजमु समझ कछ बिगड़ियो नाहन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो,

ओ संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के झूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

तन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद, बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो, कूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके।

ओ काहू को नाही राव, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु जिसके रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत ने रह। कर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर पागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो न्यो लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को काम न आयो। सोरठ महला पहला कर पहला, अष्टपदियां चौतुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो हर बिन, होर ना पूजो, मरे मसान ना जाई, तृष्णा रात ना पर कर जावा।

पैरागी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हृदय शब्द सदा पैर रचिया गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रजे

करम सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगाम जिन चाख्या से ही साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथ है का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाल है पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यान नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खान शबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मन सा बंदनी पाई करम तरम बंदकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई करम सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित करम सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूकी पाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कह पारी दुर्मत कणी विगूति पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम न ना पाई है पाई बिन नाम में परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुरबिन मग्न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

बुरबिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह फिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आखे अपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी देश से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत ना आवे, अंतर लोभ सुआओ, गुरमुख हृदय शब्द ना भेजो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मन मुख फीका लाओ, भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विदाता। हों मैं मार मनसा मने समाणी, गुर के शब्द पछाता, अचिंत काम करें प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारण हारा। ओना की रीस करे सो विगुच्चे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर ले लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चाड़। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस नेल मिलाए, आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हों वारी हों वारने पाई, सतगुर को सद बलिहारे जाओ, नाम निधान जिन दित्ता पाई, गुरमत सहज समाओ, गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई है पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई, तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सोहागणी पाई, अंदिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए,
गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित लाए।

प्रम्पो होवे नाथ, मिल संत सवा मन मांझिए पाई, हर के नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवे प्रगास। गुरु बचनी सुख उपजे पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सबकी तूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुने हजूर। जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला परपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। तिस पावे ता मेल ले पाई, हृदय नाम निवास। गुरुमुख कमल प्रगासी है पाई, हृदय होवे प्रगास। प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई, मौलिया तरत आकाश। गुरपूरे संतोखिया पाई, एनस लागा पाओ। रसना राम रवे सदा पाई, साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई, नेचल पाया थाओ। जिस प्रतीत ना आवई पाई, सो जीड़ा जल जाओ।

ज्ञान तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी। तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया। दाता करता आप ओगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया। हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा। हौ मैं जल ते जल मोए, प्रम आए दूजे भाए। पूरे सतगुरु राख लिए अपने पन्ने पाए। ए जग जलता नदरी आया, गुर के शब्द सुभाए। शब्द रते से शीतल भये, नानक सच कमाए। महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेव्या, तन जन्म प्रवान। जिना सतगुर जीवंदिया, मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान। कुल उधारे आपना, सो जन होवै प्रवान। गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है। मन मुख जन्म मरा है, नानक मोए ना आखिए। जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी। हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम त्याई है। सतसंगत साधु लग, हर नाम समाई है। हर तेरी वड्डी कार, मैं मूर्ख लाई है। हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है। हौ गुरमुख कार कमावा, जे गुर समझाई है। श्लोक महला तीजा। पूरब लिखिया कमावना, जे करते आप लिखियास। मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास। मत जानो जग जीवदा, दूजे पाए मोयास। जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो, से बहन न मिलनी पास। दुख लागा बहु अतकणा, पुत कलत ना सास कोई जास। लोकां विच मुह काला होआ, अंदर उब्बे सास। मन मुखानो को ना विसही, चुक गया वे सास। नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिना अंतर नाम निवास। महला तीजा। से सैन से सज्जना, जे गुरमुख मिले सुभाए। सतगुर का पाणा अन दिन करें, से सच रहे समाए। दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए, जे अभिमान करें बेकार। मन मुख आप स्वार्थी, कारज ना सकें सवार। नानक पूरब लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै, आप खेल रचाया। त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया। विच हो मैं लेखा मंगी है, फिर आवे जाया। जिना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया। बलिहारी

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया। गुरमुख विरले सो जी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। सबदे ही ना उपजे सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नी जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना हर तु

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। श्री हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप।

गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, जिन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मने।

जा। हर गुण तोट ना आवई, कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे, गुण में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी, कड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई, बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा, अंतर विवेक कर, सो बूझे एहो विवेक, जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा, गुरमुख हर सत हर।

शक्ति सब जगत खाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर सो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही ना कन पल्ले पाए पर सके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार ना चुके ना संसार विचों जाए नानक नाम विहोणिया मोकाले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

है सब राज सुष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार।

जम दर बदे मारिये फिर विष्टा माए पचाए महला तीजा नानक सतगुर सेवे अपना से जन सच्चे परवान हर कह नाए समाए रहे चूका आवन जान पौड़ी।

तन पाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन पाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन पाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या। तन तन

आए। नानक जे गुरुमुख करें सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हों बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आए।

गुरमुख हर कीरत फल पाए जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अंधिन भगत हर उचरे हर भक्ति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उठारे दब्यो सुत्या गई वे आए सतगुरु का शब्द सुन ना जागियो अंतर ना उपजियो।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिर कह पाणे।

आई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबे बिगूते देखो निर्ख शरीरा, हर के नाम बिन

आई बाजीगर स्वांश कहला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई जा को

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग।

तो मन पवने सुख बनिया किछ जोग प्राप्त गनिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मृग पड़त है चोरी मूंद

सिखारी। अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी,

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

0: सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा कह सोई।
1: तनासरी मैला पहला कर पहला।

चुप चुप होए रहाओ। तनाश्री महला पहला। हम आदमी हाँ एकदमे, मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिसे सरेव हो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया,

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए रहाओ। वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए। जै देखा तेरिया समाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। श्री महला पहला। नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यों चित लागे फिर काल न खाए रहाओ। सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार। तनाफरी मैला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत सुआद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना होर नाही थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्व दतार। तनासरी महला पहला। चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता कसु ना छीजे, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सत्यार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाना, खोटे का मूल एक दुगाना, जे साथ रखिए दी जैर लाए, जा परखिए खोटा होए जाए, जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे।

को संसार तुद पावे अदि परवान नानक जाने जान सुजान तनाफरी मैला पैला काया कागद मन परवाना सिर के लेख ना पड़े आना दरगे कड़िये तीने लेख खोटा काम ना आवे वेख नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाओ कादी कूर बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप करे सगले कुल तारे दानस बंग सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मलकोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगे का निशान तनाश्री मेला पहला करती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सबका टब खानष्ट जग पृष्ट होए डूबता इव जग कल में राम नाम सार अखी तमीटे नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ आंत से ती नाक पकड़े सूझते तिन लो मगर पाछे कछ न सूझे ते पद्म अलो खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच्छ पाखिया गही सृष्ट सब इक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट

का पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मले आमलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नम नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए जो किस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हम दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम।

ए तम अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए, अपने सतगुरु को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणे, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एको सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनात्री मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अख अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

वड़ियाई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा।

अपनी पत होई। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबद सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनाथ जी मैला तीजा।

दुख जाए, सत्य शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ। कूण कुसत तृष्णा अग्न बुझाए, अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ता आप जाए, साथ महल पाए हर गुण गाए। ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए, होमे विचों ठाक रहाए। किसनो कही है दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा धावा। त्रासी मैला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए, ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, ताइस मन की सो जी पावे, मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई, गुरमुख ए मन लया सवार, हों मैं विच्चों तजे विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार, मन मुख पूले अंध गवार। विख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए, काचा तन सुन आवे जाए रहाओ। मन मुख पूले सब मरे गवार, पर जल डूब

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हौ मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हौ मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का कान बहुत अभिमान।

परम पट फूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया। सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे।

निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा। हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आज कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे, तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम किसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल। सब के

स्वामी हम हर लोच लुचाने हम हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्ताने हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूख पुकाने जिनके बड़े पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी। त्रासरी मैला चौथा

नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा, कल युग का कर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साख जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की, जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा, कर पंजवा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम, मनमोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुरपुरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट, हर संग हरि सब संग भये। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नव छह खट बोले मुख आगर। मेरा हर प्रभ इवना पति ने, जन नानक हर हृदय सब प्यावो, क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा। सतगुरु इव हर हर नाम त्याई, हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे। हर हर हर जोत समाई, जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी। हर जस ऊंच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुरु भगत हर दीनी। तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहुत चिंत विसारी। हर नाम उर्धारी, नानक हर पै है सखाई। तनासरी मेला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट इन पान। हर नाम मुरारी, मन जपिए हर जगदीश। मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती। हर कीरत कर बनवारी रहाओ, हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम। हर हर नाम जपियो गत पई हमारी, जन नानक की पत राख मेरे स्वामी। हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मेला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन। सब चाहे हर जियो तेरो नाम, गुर प्रसाद को विरला पावे। जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ, जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हों तिनके सब दलिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम दियो सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे। सब गावे हर हर उत्तम बानी, गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी।

साचा साहिब सतू मेरे साह तेरा किया सत सब होए झूठा किसको आखिए शाह दूजा नाही कोए सबना विच तू वर्तदा शाह सब तुझे प्यावे दिन रात सब कुछ ही थामो मंगदे मेरे साह तू सबना करें एक दात सब

पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल मैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना असरचियो कर लीनो अपना, उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनातरी मैला पन्या, कर कृपा दियो मोहि नामा, बंधन ते छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा, गुर की चरणी लाए। साध

जनस ओए आए महाआनंद सदाकर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई तरह पतवस्त।

करते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अरपूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैच कोट अगमा से, भगत बांछे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेव एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी सिमरत पार कराना। शीतल शांत मां सुख पाया, संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

प्रीत अमृत संग नहीं रुच आवत दिखै ठगोरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद है जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला कन्या पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निद पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मध्ये जब तक पेखो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निद पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप पगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनाश्री मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते।

ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ, किसी वाद काट किसी पे सगले लर लर मुआ। हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया, गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया। संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे। सनातनी मेला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्हीं लही है रहाओ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा।

प्रभु जी को नाम जगत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव। जात ताप प्रमन गसदा कर, उर्द ताप लै गैन, ए बिद नै पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नंगा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन हाथ तारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांचे नित नानक पुने पुने बलिहारिया त्रासरी मैला पंजवा मेरा लागो राम स्यो हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो अपना कर।

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए जी उदाहरण, सब कुल कारण हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा।

कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यो हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा, साथ धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो स्यो रचो मीठा, दात प्यारी विसरिया दा तारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने, जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी, संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के भगत गोविंद, सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, दे कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास, प्रभ दयाल किरपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रात, मिल साध संगत होवत परगास, जीवन का दाता पूर्ण सवठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगे मिले तिसे ही जाए, सही पगत जे साचे भाने, जम काल ते पए निकाने, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, काट काटे अंतर सगल आधार, नानक जाचे संतरेणा।

कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी साम सलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी, चरण शरण नानक दास हर हर संति ए विद जाति। सनाश्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंठ लाए गुरु राके, संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर पाके। जिनके मन साचा विश्वास, टेक टेक स्वामी की शोभा, अनब सदा उलास रहाओ। चरण शरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो, जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर, दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आई। ईत ऊत नहीं बिछड़े सो संगी गनिये, दिनस जाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे कट ऊन न होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जाका रूप, जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप। सामत देओ दयाल प्रभ, जित तुम्हें अरादा, नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा। सनाश्री मैला पंजवा जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज से पी कर आओ, अनद मंगल गुण गाओ, सहज तुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन खाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, ए उपदेश मोको गुरदीना जियो। किस त्यों ना लाई ही ते जा को किश ना ही बीत, संत की बार ओ संग न चाले। मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध, जाके संग तेरे बंधन छूटे। गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय। सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जाको कृपा की जय। तना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है सीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। ए लोक परलोक संग सहाई, जत सत मोहि रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए न सा कह जा ले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनाश्री मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनज सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, ताको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनाश्री मैला पंजवा। दर्भवंत दर्ब देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनाश्री मैला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनाश्री मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उठ ताके उठते उठते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल ज्यों राखे मैं तारी

आओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा सनासरी मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओ पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे सनातरी मैला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिल सुना कतहु जात सतगुरु पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात सनातरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त सात जना संगारी सनासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तनवन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निधाती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती सनासरी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नान के आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारे हो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शन

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आब अंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अबागा चरण कमल जाका मन राज्य हो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम से मन लागा रहाओ जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम। मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम। चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम। गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुरबान। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते एक दान। सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो। शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभु जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन। तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक। मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख। कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक। आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक। तनासरी मैला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम। मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल। अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल। सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम। जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम। सनासरी मैला पंजवा जन की पार ब्रह्मसार। निंदक टिकन न पावन मूले उड गए बेकार रहाओ। जह जह देखो तें तें स्वामी कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार। करण हार रखवाला होआ जाता अंत न पारा वार। नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूफ से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुणे सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुंगाए। शस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हो आ कर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी। जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यों मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनाश्री मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यों उदर परो। कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो। त्रासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां इको अंकार। सतगुर प्रसाद गुर सागर रत्नी पर पूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे। क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए। रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस जाके, खावन जान रहे गुरु राखे। सर्वर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई। आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज विचारी। भगत वचल तय काटन हारे, हो मैं मार मिले भगतारे। अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे। कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज तरम तरनी तर टेक। जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे। सूरत मूरत

सहज मिले मिलिया प्रवान, नाथ स्मरण नावन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाए, बिन गुरु पे ते मर आइए जाइए रहाओ, सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुते खे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीर मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनवा ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पे त्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा, सौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये।

तारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे। आनंद अनदिन हरख साचा, दुख खिल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुरु पुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी ता संगम सत्सते। आराध एकंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कहे सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा, कूच करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई, नानक साथ कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। सनातनी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ।

आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकत सहाए सच में साच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना। सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई। तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो दो रहा चलाए हुक्म समाए जन्म हुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द विकाने पारस परसे पारस होए जा तेरे मन पाने। अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी। भूख प्यासो आस क्यों दर जाए सा जियो सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी। तनासी संत मैला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो लेख ना मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी। तन जोबन आख की छाया बिर्द पए दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या। बूढ़ी कर कालो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए हम दिन नाल प्यारे। बिन पगती कर वास न होवी सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचे नाए। फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी ना

रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण पिर स्यो प्रीत प्यारी पिर कर सो है नार जे पिर पावे जियो झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो झूठ अलावे काम ना आवे ना पिर देखे नैनी अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सहज समाए तन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती तिर रलियाला जो बन बाला तिस रावे रंग राती गुर शब्द विगासी सोरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाई है जियो। गुण गाए विकसै सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अहंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे सा पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अन दिन विवेक बुद्ध बिकरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत संगत मिले वड़ पाग ता हर रस आवे जियो। अन दिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत शोभा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सो दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले। पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे। हुक्म मन सुख पाया। अन दिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, ज्यो जल जल में पैस ना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहां निहोरा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोक जैबो, पूछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबे बड़ियाई, अंत न पाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई। रहाओ बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई दुर्वासा स्यो करत ठगौरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दस बैरागन मोह बक्कीनी पंचों का मिट नावो सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कटते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ए संसार ते तम ही छूटो जो माया नह लिपटाओ माया नाम गर्व जोन का ते तज दर्शन पावो इत कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है कहत नाम दियो बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी में सागरा रहाओ

कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे ते मादो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पै उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए पूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनिक पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तो खीले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटेरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राज

सत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति।

हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधननी का अनाज मंगो सब्जी का, गौ पैस मंगो लावेरी, इक साजन तुरी चंगेरी, सर की गीहन चंगी, जन तन्ना ले वे मंगी। जैतसरी महला चौथा कर पहला चौप दे, इको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया, गुर हाथ तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ, बिन गुर मूर पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैतसरी मैला चौथा। हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा, ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा, हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैतसरी महला चौथा। हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना, हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे हियरे, मेरे प्रीतम नाम पराना, दिन नामे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यों अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर पाग पुराना, तिन हम चरण सरे वै खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना, तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया, जन नानक तिस कुर्बाना। जैतसरी महला चौथा। सत गुरु सा जन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाएबा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम उमाहा राम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम उमाहा राम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन उमाहा राम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमाहा राम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम उमाहा राम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहा राम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहा राम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप उमाहा राम। सब कर्म तर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो। बेसुमार बे अंत बढ़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसे प्रम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग। तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड्यो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो माया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाय। सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुन गाई। जैसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचे सुधा संजोर, या रस में मगन होत किरपाते, मां बिख्याते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरना ते हैं हम अनाथ ना

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मर्दे को विसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार पर्यो शरणागत अभय दान प्रभ दी जय। जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसारा रहाओ। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो

जय। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पूरा।

चाले हाँ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख।

आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हौ खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सामे पाई वर लोड़ींदा आया वजी वधाई मां मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरुमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले।